0: ओए
1: हाँ
0: के लाभ ओम
1: तपकलाङ माले
0: ए ओम गातीको छेपा छापडी मै थिए रे
1: चुरिम यार लानो छेपा छापा मलाई ओए गो रापकोटी घिउ पुगले
0: ए ला ला ओम साई चाखा पम
1: 36 माले
0: ए ला ला बाय
1: बाय।

0: ओ एलन दोकाजी
1: अ तिरिन खबा केलोल खबनगे
0: अनिङा त कट्टु बाजिस
1: एन चु जापान कोरे आइन माले चु याङला तामाङ युल सङेना याङला तामाङ युल सारी तुन म कट्टु गन्छे आइन याङला तामाङ गइलो गन्दोला ना बरु चु याङला तामाङ गइलो गन्गो धोलोङा ग्याम्री खाना खानन यदाङे चु नुसि बाबु चु कन्छि बरु नङ्गार यदिन गा नला धिम्रिनी बाबु

बारीले तिगा बिमुला बिव भन्दा परमेश्वर चाहिँ याङला बारीले तिगा विश्व मुला बिव ताम्री विश्वास लादोला लानन पटक याङ स्यान्दोला विचार न्यान्सुमुला देन याङ थेनिगा देता याङ तिगा मनमुला थेन्दे याङ राङला बारीले हराङमा महसुस लाउला विषय निर्णय लाउरी पिन्ला तसै याङला लाग्ने महत्वपूर्ण तसुला याकर्की जेकिन विचार विवाह लसुला रो स्वर्ग देन पृथ्वीला सृष्टिकर्ता मुसुला थेतासे परमेश्वर से याङला बारी तिगा मनसुला थे सन्दो हलैसे तिगा मनसुमुला विवाह भन्दा लानन महत्वपूर्ण तादोला देन परमेश्वर से याङला अद्भुत मनसुमुला एफिसी एक अध्यायला चार चोखो दिन तिगै दोष आरिबा मी शोभाला लागि परमेश्वर चाहिँ ख्रिस्ट दिन छ्याम गी सोसी चु जम्बुलिङ शोभा भन्दा नछन धनबा हिन्न जब परमेश्वर चाहिँ गन्दा च्यासु मुला रोसे याङला हाजीबाई एन गल्ती अनाङ मुसुला रोला नजरी याङरी हाजीबाई फिर्का ला दाग अरे हाजीबाई कमजोरी अरे याङ रोला नजरी धर्मी मुला येसु ख्रिस्ट याम मुक्ति याङमा भन्दा नछ याङ अपराध देन पापी शिव मुबा परमेश्वर चाहिँ याङला थे दोब ग्लाघ्यम बचाप लसुजी यसुला काघ्यम रोसे याङदा याङला बेनन बिकतला पाप गदे घ्याम शुद्ध लसुजी थेलिच रोसे

0: Yangsi ngatsanon yangba tamgat den mahasus labri yangla semda rupantran labahinba. Parmeshwar se yangda je sungsiula bimula yangtigai hinba bisi rangra biswasta labahinba. Mati paansa dehla chongda. Gambri muba saharda jammasen mangba ranglasi enigade non jambulingla nangsal तबसे लामा जम्मासेन राङ्ला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से राङ्ला बारेरी चुनोन पाङसुमुला राङ जब मुस्युला सारा संसार लागि ज्योति मुस्युला रो स्वर्गादेन पृथ्वीला सृष्टिकर्ता मुस्युला थेरङ हिन्सम रङ हाल्द विश्वास लबे दमसुमुला तिगा राङ निगदेसे राङ्ला बारेरे तिगा बिमुला बिसी विश्वास लमुला वा परमेश्वर से राङ्ला बारे तिगा बिमुला बिसी विश्वास लसुला हाइमै हाइमैमा मि गदे सन्दु क्रिस्चियन गदेसे एन राङदा निरसाहित लाभ प्रयास लाला थेनी गदेसे राङदा विवाकी राङ जबा अरे वा राङ योग्य अरे थेनी गदेसे राङदा बदनाम ल प्रयास लाला एनी गदे राङ होसियार अरे विषम थेनी गदेसे राङला लागिरी अजेवा महसुस लाला राङदा सुचब लबरी लगब लाला कि राङ योग्य अरे याङला शरीर अनुसार ज्ञान अनुसार याङ योग्य अरे दसै परमेश्वर जे यसो ख्रिस्टला जिम्बा घे ज्ञाम राङ देन गादा योग्य सोस्युबा मुला मती पाँच अध्यायलाई पन्ध्र इन्जे सोह्र मिगदेसे नाङसर मासी फाम्सी घम्सी गप्सी अथान तर दिम्री मुब जम्मन मिगदेसे मृङ्गै बिसी नोब ग्लारी थन्ना चुरङ लसी नाङसर जे याल ताना लब रङ लसी एनी गदेसे जब गे लसी उनगो एनी गदेला गे म्याङसी थेनी गदेसे स्वर्गरी धान्छ्यापा एनी गदेला परमेश्वर आवला जय जयकार लगाइ याङसे परमेश्वर से याङला बारीले तिगा बिसी मुला बिसी घोषणा लदोला याङची वा सहर वा नामसाला सडकरी क्याम्री ब्रब याङ सन्दो मिगदेसे म्याङबरी हाम्बा ज्योतिहीन बा बिसी दाबी लदोला गर्भाधीन साहस ल छ्याम याङ अच्छ बडब लदोला थेने याङची वा समुदायला निगदेरी यङला ज्योति चमक लदोला याङ घमण्ड वा अहङ्कारी भरवतावा आइन बा तसै याङदा थाहा मुला कि परमेश्वर से याङदा गेन लाबला लागि सृष्टि लस्युबा हिन्दा देन रो ग्याम याङ स्वर्गरी मुस्युला याङला अवधा प्रशंसाला योग्य स्यान्दोला लागि जब गे गदे लाबरी हाम्ला हेन्दे लाला एफिसी दुई अध्याय दस तिग्द विषम याङसे जब गे लगाई बिसी परमेश्वर से याङदा यीशु ख्रीष्ट याम छार मिसो सुबहिन्न थेसे मनमा अनुसार ब्रगाई बिसिन परमेश्वर से याङदा गच्छ हेनसेन शुभ मुभा परमेश्वर से गन्दा जे सोशुभ मुला थे निपुण कलाला याकर कि जेब टुग्रहिन्मा रो बेनन भन्दा गेन कलाकार मुस्युला थेन्दे याङ रोला सृष्टि हिन्बा राङला मुस्युला बिसी हाइमै लज्जित थलासुगो तिग्दाबिसम परमेश्वर राङदेन लज्जित अरे रो राङदा माया लसुला थेन्दे रो सेम लसुला कि राङसे संसार से माङमा लसी रोलम प्रेम प्रकार लसुगो आमेन राङिला जीवन रे परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे राङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 6 85 53 339
2: टाइम चेक इट्स 7 PM